बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की चाय हो, नाश्ता हो, खिड़की से आती धूप हो या फिर दिन भर की भागदौड़ से पहले थोड़े से सुकून भरे पल हो, हर सुबह अपने साथ कुछ कहने सुनने का बहाना लेकर आती है। तो क्यों ना आज की सुबह हो थोड़ी और रंगीन, थोड़ी और सुरीली और ढेर सारी प्यारी प्यारी गपशप के नाम। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर नॉनस्टॉप गपशप और मैं हूं देवजानी। आइए सुहानी सुबह में करें कुछ दिलचस्प बातें, सुने मौसम का हाल, जाने आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें और हाँ, बीच बीच में होंगे हमारे पसंदीदा गीत भी, जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी खुशगवार। तो बस नाश्ता तो आपका अब तक निबट चुका होगा या फिर बच्चों को खिला दिया, औरों को खिला दिया, खुद खाने का समय नहीं हुआ। तो बस नाश्ते की प्याली जो नाश्ते का जो प्लेट है उसे और चाय की प्याली को लेकर बैठ जाइए, मुस्कान जरा सी और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा समय जिसमें हम करते हैं गपशप, जिसमें बातें होती है, गीत भी होते हैं और आपके साथ इनडायरेक्टली हमारी बातें होती है। तो चलिए बिना किसी और देर की, यानी कि कहते हैं ना जैसे कि विदाउट मच अडो, शुरू करते हैं नॉन स्टॉप गपशप और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

आपको पता है कि 10:02 से हम सफर की शुरुआत करते हैं और नॉन स्टॉप गपशप की जो ये रेलगाड़ी है ये चलती रहती है 11 बजे तक और तब जाकर अपने लक्ष्य पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, मंजिल पर पहुंचती है। 10:15 और 15 सेकंड्स 107 FM रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।

हूँ देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ। तो चलिए अब रुख करते हैं मौसम की ओर और पता करते हैं मौसम का हाल। कोलकाता में आज 5 सितंबर की सुबह आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान की बात करें तो मौसम विभाग कह रहा है कि अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा अधिकतम 98% और न्यूनतम 67 यानी कि 67% रही। वहीं कल सुबह 6:30 से लेकर 24 घंटों तक शहर कोलकाता में कोई भी बारिश दर्ज नहीं की गई। मछुआरों के लिए भी कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं है। तो अगर आप अपने दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, शनिवार को शनिवार की तरह बिताने का प्लान कर रहे हैं या फिर दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज आपका हाफ डे है, जल्दी निकलना चाहते हैं, तो मौसम का ख्याल जरूर रखिएगा। और कहीं भी जाए याद रखिएगा बारिश का मौसम है, मानसून का समय है और बारिश जो है वो प्रेमी की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कब आने की बात करता है और कब आता है इसका किसी को पता नहीं होता, तो छाता जरूर साथ रखिए। फिलहाल इतना ही मौसम समाचार, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन जी हाँ, आज के दिन यानी कि 5 सितंबर के दिन इतिहास के पन्नों में अगर हम झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ खास तो होता ही है। हर दिन हमारे लिए कुछ खास बातें, खास यादें जरूर लेकर आता है। एक तारीख जो हमारे लिए कभी कभी सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पर एक दाग नहीं बल्कि कुछ ना कुछ मायने रखता है। आज का दिन ऐसा क्या है, क्यों खास है, ये पता करते हैं इतिहास के पन्नों में झांक कर। ...1979 में लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में अर्ल ऑफ माउंटबेटन का औपचारिक अंतिम संस्कार आयोजित किया गया था आज के ही दिन। 1980 में स्विस एल्प्स में स्थित विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग सेंट गोटहार्ड खुली आज के ही दिन। 2019 में भारत के हैदराबाद में 74 वर्ष की आयु में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद एर्रामट्टी मंगम्मा दुनिया की सबसे अधिक उम्र वाली जीवित मां बन गई। आज जयंती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 1888 में पैदा हुए भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति, उनकी जयंती भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज के ही दिन 1946 में पैदा हुए थे फ्रेडी मर्करी, प्रसिद्ध गायक, गीतकार और रॉक बैंड क्वीन के प्रमुख गायक फ्रेडी मर्करी। 1951 में आज के ही दिन यानी 5 सितंबर के दिन अमेरिकी अभिनेता जो बैटमैन, बर्डमैन जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है, उस माइकल कीटन का जन्म हुआ था आज के ही दिन। और साथ ही साथ आप मना रहे हैं अपना जन्मदिन, तो हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: आज के दिन

0: सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे

परीक्षाओं का मौसम है। कुछ बच्चों की परीक्षाएं जो है वो खत्म हो चुकी है और कुछ बच्चों की अभी जारी है। बच्चों की पढ़ाई जोरों पर है और इसी बीच मौसम भी करवट ले रहा है। कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी उमस, कभी बारिश की वजह से ठंडी हवाएं। ऐसे में बच्चों को मौसम की मार से बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना।

सबसे पहली बात बच्चों को मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाएं। सूती के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं इस मौसम में और उन्हें गीले कपड़ों में बिल्कुल ना रहने दें। और हां, पानी पिलाना ना भूलें। परीक्षा की तैयारी में जब बच्चे अक्सर घंटों किताब कॉपी में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, कमरे का तापमान

0: रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी एसी अगर घर में हो तो उसे बहुत ज़्यादा तेज ना चलाएं, और पानी भी जब पिलाएं तो कमरे के तापमान का पानी पिलाएं या थोड़ा सा गुनगुना सा पानी पिलाएं। अगर बच्चा छोटा है और कार में स्कूल जाता है तब भी सावधानी बहुत जरूरी है। कार के अंदर का तापमान बाहर से काफी अलग हो सकता है। एसी की ठंडी हवा सीधे बच्चे के चेहरे पर ना पड़े और स्कूल पहुंचने पर अचानक बहुत गर्म या बहुत ठंडी हवा से संपर्क से बचे। अगर जुकाम की शुरुआत महसूस हो, जैसे हल्की छींक, नाक बहना या गले में खराश, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आराम, पर्याप्त मात्रा में पानी और हल्का गर्म तरल जैसे सूप या गुनगुना पानी राहत दे सकते हैं। बच्चों को पर्याप्त नींद भी मिले, क्योंकि देर रात तक पढ़ना हमेशा बेहतर पढ़ाई की गारंटी नहीं होती। याद रखिए, परीक्षा में अच्छे नंबरों के लिए सिर्फ किताबें नहीं, सेहत भी साथ चाहिए। इसलिए पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक, पौष्टिक खाना, पर्याप्त पानी और भरपूर नींद, ये है परीक्षा के मौसम में बच्चों की सेहत के चार आसान पहरेदार। तो आज एकजुट के नुस्खा माफ कीजिएगा। जी हाँ, छींक, जुकाम, बहुत कुछ जो है हमारे घर में भी दस्तक दे रही है, और इसलिए कभी कभी नुस्खा नुस्खी ये गड़बड़ हो जाती है। तो बस आज एकजुट के नुस्खा इतना ही। बच्चे की पढ़ाई का टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसमें नींद, पानी और मौसम से बचाव के लिए जगह भी बिल्कुल बनाकर रखिए।
1: एक चुटकी नुस्खे।

Calça. शहर कोलकाता में आज आसपास क्या हो रहा है जहां आप जा सकते हैं, आप जहां शामिल हो सकते हैं। शनिवार का दिन है, आप अपने शनिवार को अगर थोड़ा सा अलग तरीके से बिताना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आज ये बताते हैं। आज शहर कोलकाता में कुछ एक नाटक मंचस्थ होने वाले हैं, पौदातिक लिटिल थिएटर, इसकी उसकी और उनकी, ये नाटक है आज। इसके अलावा एक इंग्लिश नाटक है सिसी द अर्बन थिएटर प्रोजेक्ट की पेशकश, द लॉस्ट फाइल्स ड्रामेट स्टूडियो हिंदी प्ले, इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं, म्यूजिकल इवेंट्स और कुछ कॉमेडी शोज। इंडिया टूर गौरव गुप्ता आज शाम 7:30 पर धनोधन ऑडिटोरियम, ये एक शो है। इसके साथ ही साथ गाने फ्यूजन है, द बर्मन क्रॉनिकल्स टेल्स एंड ट्यून्स विद मीर, ये इवेंट है शहर के एक ऑडिटोरियम में आज नजरुल मंच में, जहाँ पे आरडी बर्मन एसडी बर्मन के गानों को लेकर एक म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा है। इसके साथ ही साथ एक और इवेंट है मेघेर संगे चांदेर देखा, ये एक

0: unique musical hai that brings together two iconic Bengali bands from Bangladesh and from India. Laksha Maheshwari ke saath ek event hai aaj sham 8 baje. Laksha Khushiya. To ye the kuch events aaj. Filhal isi ke saath ye सेगमेंट हमारा यहीं समाप्त होता है. कोलकाता कल्चर.
1: कोलकाता कल्चर.
0: और देखते ही देखते कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं. 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप देवजानी के साथ. और इसी आखिरी गीत के साथ ही साथ मैं लेती हूं आज भर के लिए आपसे इजाजत. सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए.

गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर। आपका दोस्त आरजे अंकित हाजिर है आपका अपना फेवरेट शो लेकर, अपना आपका कार्यक्रम लेकर, तीन का तड़का। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के बज चुके हैं 3:05 और बेहतरीन गानों के साथ आपका दोस्त तड़का लगाने के लिए आ गया है। रहने वाला हूँ 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, गानों के साथ करूंगा आपका एंटरटेनमेंट, ये मेरा पूरा पक्का वाला वादा आपसे। तो चलिए, अब आप सोच रहे होंगे गाने कहाँ, चलिए गाने शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

फिल्म आवार अपन टू से दोस्तों आप सुन रहे थे सुबोध शर्मा की आवाज में। ट्रैक मीठू का कंपोजिशन शहीद कादरी के थे बोल दोस्तों। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन प्राप्त कर रहे तथा स्वयं अपना भरण पोषण करने के माध्यम सीनियर सिटीजन को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के तहत भरण पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है।

फिल्मी शहजादे का टाइटल ट्रैक दोस्तों जावेद अली श्रेया घोषाल की आवाज में अमित त्रिवेदी ने सजाया था संगीत से, कौशल मुनि ने सवारा था बोल से। और दोस्तों रॉकस्टार से तो हम हमेशा वो गाना सुने हैं तुम हो, लेकिन आज हम सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में तुमको। आइए सुनते हैं वो ट्रैक।

फिल्म रॉकस्टार से दोस्तों कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत एआर रहमान का कंपोजिशन लिरिसिस्ट इरशाद कामिल। और दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार महिलाएं अब अपने पैसे से जुड़े फैसले खुद ले रही है और अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, उनमें निवेश को लेकर समझदारी बढ़ी है। अब ज्यादा महिलाएं खुद कमाई कर रही है और अब वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो रही है।

0: फिल्म दम मारो दम से दोस्तों जुबिन गर्ग की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक। म्यूजिक डायरेक्शन प्रीतम का था और बोल लिखे थे जयदेव सानी ने।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी गिरवी या गारंटर यानी कोलेटरल फी के आसान शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन उपलब्ध कराना है। शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों QHEI में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना किसी कोलेटरल या गारंटी के लोन मिलता है। 7.5 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण सरकार द्वारा 75% की क्रेडिट गारंटी दी जाती है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख तक है उन्हें मोरेटोरियम अधिस्थागतन अविधा के दौरान 3% ब्याज सहायता मिलती है। ये योजना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों लगभग 860 शीर्ष संस्थानों पर लागू होती है। छात्र इस योजना का लाभ उठाने के लिए माई स्कीम या संबंधित बैंकों के पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल आवेदन कर सकते हैं।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों 3:29 PM हो चुका है। आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है तीन का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर रहने वाला हूँ 4 बजे तक आपके साथ और दोपहर से शाम 4 बजे तक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रैक्स। और आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ और अगले ट्रैक के पहले आपको बता दूं कि आप हमारे कार्यक्रम 107 FM रेनबो पर तो सुन ही रहे हैं लेकिन साथ साथ दोस्तों अपने फ़ोन पर अगर आप एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर ले तो वहाँ भी सुन सकते हैं। वो है न्यूज़ ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप। करिए उसको डाउनलोड, ट्यून करिए हमारा चैनल और इन्जॉय करिए हमारे सारे कार्यक्रम।

फिल्म रव लव ब्रेकअप्स और जिंदगी से सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की आवाज में। ये ट्रैक सलीम सुमन का कंपोजिशन, जावेद अख्तर की बोल। और दोस्तों अगला ट्रैक में सारे हैंडसम लड़कों को डेडिकेट करना चाहता, तो आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।

फिल्म देसी वॉइस तो के और बॉब लेकर आए थे ये गीत प्रीतम का संगीत कुमार के बोल। और दोस्तों एक जरूरी सूचना कि हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना अगले 2-3 घंटे के दौरान मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकती है।

फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से दोस्तों आप सुन रहे थे बेनी दयाल और रणवीर सिंह की आवाज में ट्रैक। रणवीर सिंह का दोस्तों ये छोटा सा रैप था और सलीम सुलेमान का था कंपोजिशन। और दोस्तों नेपाल में 26 अगस्त को आए भीषण हिमस्खलन में जल प्रवाह के 9 दिन बाद त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना को अंधेरी सुरंग में 2 श्रमिकों को शुक्रवार को चमत्कारी रूप से जीवित बचा लिया गया। संयोग से ये बचाव अभियान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सफल हुआ। सुरंग के निकाले जाने के बाद फॉरमैन संजय शाह ने सबसे पहले यही बताया कि सुरंग में फंसे रहने के दौरान वह निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे।

फिल्म दबंग से दोस्तों सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे रोमांटिक ट्रैक साजिद वाजिद का कंपोजिशन और जली शेरवानी के थे बोल। दोस्तों फिल्म दबंग में आपको सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगे इस गाने में रोमांस करते हुए। और दोस्तों बात हो रही है रोमांस की, तो हम किंग ऑफ रोमांस यानी शाहरुख खान को कैसे भूल सकते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं अगला ट्रैक शाहरुख खान की फिल्म से।

फिल्म माय नेम इज खान से दोस्तों आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली की आवाज में, ट्रैक शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन, निरंजन अयंगर के बोल। दोस्तों वक्त आ गया कि बढ़ चले हम अपने लास्ट ट्रैक के तरफ, और लास्ट ट्रैक के लिए बस इतना बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अपनी सारी चिंताएं सारी टेंशन भूल जाइए और अगला ट्रैक आप सुनिए।

बिल्कुल सही था दोस्तों। और सुन रहे थे आप इट फॉर गोलमाल 3 से शान और अनुष्का मनचंदा की आवाज में प्रीतम का कंपोजिशन कुमार के बोल। और दोस्तों ये था हमारे कार्यक्रम का लास्ट ट्रैक, आखिरी गीत। और इसी के साथ दोस्तों आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत सिर्फ थोड़ी देर के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों से वापस से मिलूंगा FM रेनबो पर ठीक 7:02 शाम के। और अगर आप मुझसे फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं FM गोल्ड पर, वहां पर मैं जुड़ूंगा आप लोगों से 5:15 पर। तो बस आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस ट्यून करते हुए रहना है FM रेनबो, क्योंकि आने वाला अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में आपके लिए। तो बस ट्यून करते रहिए FM रेनबो।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर। दोस्तों आज आरजे अंकित हाजिर आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जाने अनजाने। हिंदी सिनेमा के उन किस्सों के नाम जो कभी हमने सुने और कभी स्क्रीन पर देखकर भी उनके पीछे छुपी कहानी को जान नहीं पाए। लेकिन दोस्तों आज का जाना अनजाना थोड़ा सा अलग है। आज हम उन बॉलीवुड फिल्मों की बात करेंगे जिसे हमने अपनी आंखों के सामने बदलते देखा, सीडी से स्ट्रीमिंग तक, म्यूजिक एल्बम से सिंगल तक और प्लेबैक सिंगर से सिंगर सॉन्ग राइटर तक। जी हाँ।

दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली म्यूजिकल कहानी से। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो फिल्म का हिस्सा होने के बावजूद फिल्म से बाहर अपनी अलग जिंदगी जीने लगते हैं। एक तारा भी उन्हीं गीतों में से एक है। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग म्यूजिकल फैक्ट है, वेकअप सिड के साउंड ट्रैक में शंकर, एहसान और लॉय के साथ अमित त्रिवेदी ने एक तारा के लिए गेस्ट कंपोजर के रूप में काम किया था। गीत कविता सेठ की आवाज में बहुत पॉपुलर हुआ, यानी एक ही फिल्म लेकिन म्यूजिक के पीछे एक से ज्यादा क्रिएटिव म्यूजिकल माइंड्स, और शायद इसी डाइवर्सिटी ने वेकअप सिड के साउंडट्रैक को इतना फ्रेश बनाया। और दोस्तों इस ट्रैक को सुनने से पहले आपको भी बता दूं कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई जाने अनजाने किस्से हैं जो आप जानते हैं किसी फिल्म से जुड़ी हुई, किसी गाने से जुड़ी हुई, किसी एक्टर्स एक्ट्रेसेस या फिर किसी सिंगर से जुड़े हुए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2213131।

फिल्म वेकअप सीट से दोस्तों सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। ये ट्रैक अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन, जावेद अख्तर के थे बोल। अब आते हैं दोस्तों 2010 पर। आपने उफ तेरी अदा सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने से एलिसा मेंडोंसा का एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकल डेब्यू जुड़ा हुआ है। एलिसा मेंडोंसा म्यूजिक कंपोजर लॉय मेंडोंसा की डॉटर है और उफ तेरी अदा उनकी हिंदी फिल्म प्लेबैक डेब्यू था। गाना शंकर एहसान लॉय की म्यूजिक के साथ चार्ट पर भी काफी पॉपुलर हुआ। सोचिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर अपनी बेटी को स्टूडियो में गाते हुए सुन रहा है और फिर वही आवाज एक पॉपुलर बॉलीवुड सॉन्ग का हिस्सा बन जाता है। सिनेमा के पीछे ऐसे पर्सनल कनेक्शन ही तो है जाने अनजाने।

फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से दोस्तों शंकर महादेवन और एलिसा मेंडोंसा की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक शंकर एहसान लॉय का संगीत और जावेद अख्तर की बोल। और दोस्तों जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया उन्हें बता दूं कि कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने, आपके साथ है आपका दोस्त आरजे अंकित। और जाने अनजाने दोस्तों कुछ ऐसे दिलचस्प किस्सों के बारे में बात कर रहा हूं जो फिल्म के पर्दों के पीछे थी, या किसी गाने से जुड़ी हुई थी, या किसी एक्टर से जुड़ी हुई थी, या फिर किसी सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर से जुड़ी। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई किस्से आपकी नॉलेज में आपकी जानकारी में तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। साल 2012 दोस्तों, एक रिलेटिवली अनयूजुअल सब्जेक्ट वाली फिल्म, आयुष्मान खुराना का डेब्यू एज अ लीड एक्टर, और फिर एक ऐसा गाना जो फिल्म की आइडेंटिटी बन गया, पानी दा रंग। इस गाने की खास बात यह भी है कि इसे आयुष्मान खुराना ने खुद गाया था और म्यूजिक रोचक कोहली का था, यानी जिस एक्टर को हम स्क्रीन पर देख रहे थे वही एक्टर माइक्रोफोन के पीछे भी था, और यहीं से एक परफॉर्मर के तौर पर आयुष्मान की एक अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी भी सामने आई। कभी कभी एक फिल्म सिर्फ एक्टर को लॉन्च नहीं करती, एक आवाज को भी लॉन्च करती है।

विक्की जोनर से दोस्तों आयुष्मान खुराना की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का संगीत और लिरिसिस्ट आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली थे। अब बात करते हैं एक ऐसे गाने की जो हार्ट ब्रेक को बहुत लाउड नहीं बनाता है, बस धीरे धीरे दिल में उतरता है। अगर तुम साथ हो फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज और एआर रहमान का म्यूजिक। इस गाने की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका इमोशनल रेस्ट्रेंट। ये गाना सिर्फ सेपरेशन के बारे में नहीं लगता, बल्कि उस रिलेशनशिप के बारे में लगता है जहां दो लोग पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और इसीलिए शायद इसका कनेक्शन इतना पर्सनल महसूस होता है। कभी कभी बेस्ट हार्टब्रेक सॉन्ग वो नहीं होता जो चीखता है, वही होता है जो चुप रहकर सब कह देता है।

0: फिल्म तमाशा से दोस्तों आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में। यह गीत यार रहमान का संगीत, इरशाद कामिल के बोल। 7:28 PM हो चुका है दोस्तों, आरजी अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और आप ये हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर भी दोस्तों, और आप न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। और दोस्तों 7:30 से आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकेंगे सिर्फ ऐप पर, न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर दोस्तों। के 7:30 से रेडियो पर आप सुनेंगे कमेंट्री, जी हाँ। और जाने अनजाने में अगर दोस्तों अगर आपको भी कोई किस्सा पता है, कोई किस्से के बारे में नॉलेज है, तो आप भी दोस्तों हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341।
1: जाने अनजाने
0: दोस्तों, अब एक बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी, कर हर मैदान फतेह फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। ये उन गानों में से है जहां सिर्फ म्यूजिक एंटरटेनमेंट नहीं, कैरेक्टर जर्नी को सपोर्ट करता है। फिल्म के नैरेटिव में स्ट्रगल, फॉल और कमबैक का एलिमेंट है और गाने की एनर्जी भी वही फीलिंग लेकर आता है। गिरना प्रॉब्लम नहीं, रुक जाना प्रॉब्लम है। और बॉलीवुड के मोटिवेशनल सॉन्ग्स की सबसे खूबसूरत बात यही है, हर लिसनर्स अपनी सिचुएशन के हिसाब से उनका मीनिंग निकाल लेते हैं।

फिल्म संजू से दोस्तों सुखविंदर सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक विक्रम मोंट्रोस का संगीत शेखर अस्तित्व की बोल। कभी कभी एक वर्ड पूरी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता है, शायद ना पूरी हाँ ना पूरी ना, बस एक पॉसिबिलिटी। फिल्म लव आजकल पार्ट टू का ये अरिजीत सिंह का गाना इसी अनसर्टेनिटी को कैप्चर करता है। और अरिजीत सिंह की आवाज़ की एक खासियत भी यही है, वो रोमांटिक सॉन्ग्स में सिर्फ रोमांस नहीं, हेजिटेशन, वल्नरेबिलिटी और लॉन्गिंग की भी ला देते हैं। इसलिए उनकी आवाज़ सुनते ही लिसनर्स को लगता है ये तो मेरी कहानी है।

फिल्म लव आजकल से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक प्रीतम का संगीत और इशाद कामिल के बोल। और अब चलते हैं 2022 में फिल्म ब्रह्मास्त्र से गाना केसरिया। अरिजीत सिंह की आवाज और प्रीतम का म्यूजिक, ये गाना रिलीज के आसपास ही मैसिव एंटिसिपेशन का सेंटर बन गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज बॉलीवुड सॉन्ग का लाइफ साइकिल पहले जैसा नहीं रहा। पहले गाना रेडियो, कैसेट्स, सीडी और टेलीविजन पर ग्रो करता था। आज एक सॉन्ग साइमल्टेनियसली फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियोस, कल्चर प्लेलिस्ट और सोशल मीडिया पर ट्रेवल करता है। यानी गाना अब सिर्फ फिल्म का प्रमोशनल टूल नहीं, अपनी इंडिपेंडेंट डिजिटल लाइफ भी जीता है।

0: फिल्म ब्रह्मास्त्र से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही प्यारा संगीत, प्रीतम का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 7:43 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने आपके अपने चैनल पर 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों जाने अनजाने में मैं कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी फिल्म के किस्से, किसी गानों का किस्सा, या किसी एक्टर या म्यूजिशियन या किसी सिंगर के किस्से के बारे में आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, रहूंगा मैं आप लोगों के साथ 8 बजे तक। लेकिन दोस्तों हमारा कार्यक्रम रहेगा 9 बजे तक आपके साथ। और अगर आपके पास भी किसी तरह के दिलचस्प किस्से हैं किसी फिल्म से जुड़े हुए तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 2213-1341। अब बढ़ते हैं दोस्तों फिल्म जवान की तरफ। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में गाना था छलिया और स्क्रीन पर शाहरुख खान और नयनतारा, एक तरफ मास एक्शन एंटरटेनर और उसी फिल्म के अंदर एक सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक। यही तो बॉलीवुड की वर्सेटिलिटी है, एक ही फिल्म में एक्शन भी हो सकता है, इमोशन भी, रोमांस भी और म्यूजिक की एक बिल्कुल अलग दुनिया भी।
1: जाने अनजाने

फिल्म जवान से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। ये ट्रैक अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत, कुमार के बोल। आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में कुछ सॉन्ग्स ट्रेडिशनल पंजाबी फोक फ्लेवर को मॉडर्न प्रोडक्शन के साथ मिक्स करते हैं। आहू आहू भी इसी ट्रेंड का एक जबरदस्त एग्जाम्पल था। लव आजकल के म्यूजिक ने एक ही एल्बम में रोमांस, फॉक इन्फ्लुएंस और कॉन्टेम्पोररी साउंड को साथ लाया और प्रीतम का म्यूजिक इसी वर्सिटिलिटी के लिए जाना जाता है।

फिल्म लव आजकल से दोस्तों मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और सूजी क्यू की आवाज में आप सुन रहे थे। ये ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन और इरशाद कामल के थे बोल।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने
2: अब शादी का सीजन हो या ना हो, एवई सुनते ही सेलिब्रेशंस का मूड आ जाता है। बैंड बाजा भारत ने रणवीर सिंह को एक एनर्जेटिक न्यू एज बॉलीवुड पर्सनालिटी के रूप में स्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फिल्म का म्यूजिक भी उसी एनर्जी को कैरी करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बॉलीवुड में शादी के सॉन्ग्स अक्सर सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होते, वो फिल्म की दुनिया, कैरेक्टर्स और कल्चर को एस्टेब्लिश करने का काम भी करते हैं। आइए दोस्तों बढ़ेंगे हमारे ये ट्रैक की तरफ, यानी 8 बजे के पहले का लास्ट ट्रैक होगा दोस्तों और आरजी अंकित का भी होगा लास्ट ट्रैक, लेकिन जाने अनजाने दोस्तों रहेगा 9 बजे तक और आपके साथ 8:02 से जुड़ेंगे अमरनाथ जी। हां, अमरनाथ को कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे जाने अनजाने को और मेरे साथ जाने अनजाने यहीं तक होता है। मैं आप लोगों से मिलूंगा कुछ दिनों बाद, ये मेरा वादा है, पक्का वाला प्रॉमिस है और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड गुड नाइट दोस्तों। मिलता हूँ जल्द आप लोगों से फिर मैं।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने

जी हाँ, कुछ ना कहो, सिर्फ सुनो। सुनो दिल की आवाज़ क्या कहता है ये। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, गैरों को अपनाओ, उन्हें स्वीकारो। जी हाँ, इस पल में सिर्फ मैं हूँ ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। मेरे साथ हैं आप सुनने वाले।

हाँ मिलेंगे जब बारिश होगी, बारिश होगी तब तो। देखिए अब बारिश भी एरिया के हिसाब से ही होता है। जी हाँ, मसलन कभी आकाशवाणी के एरिया में बारिश हुई थोड़ी देर पहले, बाघा जतीन गोड़िया इलाके में भी बारिश हुई, झमझम बरसी, पर बीच में ढाकुड़िया या जादवपुर को सूखा छोड़ दिया। अब क्या करें, सोचिए सोचिए। तो आप मिलने का भी जगह खोज लीजिएगा जहां बारिश हो रही है, क्योंकि हर जगह बारिश नहीं हो रही है। और एक बात और बता दूं कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है तो अलग बात है, बट हाँ रास्ता काफ़ी भीगा अगर रहता है तो फिर बाइक लेके जो जा रहे हैं ना वो थोड़ा सावधानी से जाइएगा, या फिर जो फोर व्हीलर भी चला रहे हैं तो थोड़ा धीरे चलाइएगा ताकि ब्रेक लेने पर गाड़ी स्किड ना करे, और ये स्पेशली बाइक के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बनता है ना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने

तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। सुकून मिलता है तेरे पास आकर जो मिलता किसी और से नहीं। इश्क है या कुछ और नहीं मालूम, मगर जो तुझसे है वो किसी और से नहीं।

हमारे सुनने वाले कहते हैं कि अमर यानी कि रेडियो वाला हमसे बात नहीं करता। कोई दोस्त कभी भी पुराना होता है क्या? जी नहीं, कोई दोस्त कभी भी पुराना नहीं होता। कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है, लेकिन दूरी का मतलब भूलना नहीं होता है। एक बात बोलूं? जी हाँ, आपके साथ हमेशा हूं ऑन 17 AIRFM रेनबो, दिल से दिल तक, गीतों के माध्यम से।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म माशूक के इस गीत के साथ ही आज का छायालोक यही खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, पर हाँ, हमेशा की तरह यह कहना चाहूंगा कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत बहुत व्यस्त रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए और दुआओं में उठे अगर हाथ तो फिर एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी।

कुछ ख्वाब का खून हुआ था। गुलजार एवं भूपिंदर जौथ उपस्थापनाय सुनलाम प्रथम गानटी। परेर गानटी भूपिंदर सिंह एवं लता मंगेशकर कण्ठे सितारा फिल्म थेके। अनुष्ठान शुनछेन 107 FM रेनबो।

दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। भूपिंदर सिंह एवं लता मंगेशकर कंठे शुनलम मौसम फिल्मेर एई गानटी। एरपर लता मंगेशकर कंठे शुनबो रुदाली फिल्मेर गान।